दिल चुराने चोरी चोरी चोरी चोरी चोरी चोरी क्यों आई दिल चुराने चोरी चोरी।